0: गड़ी मेंदुर कोरी एगार गड़ी फानर मिनट मी दिवे ही राज्य गड़ू
1: मी अशार हरों में देगे उम्र फ्रेंड खास करे फवा प्रोग्रामे मी प्रोग्राम का अशार हरों दशगे खुड़ को दिन नानो गले अड़ा वाह करूं एकशी गेंबे
2: हफ्ता के वाहक
3: अस्सलाम वालेकुम रीत वाहक तवगे सिलसिला हफ्ता के वाहक के मुलिन आ बोलिन इतुर कोल्लुमा मे हफ्ता के इस्मी बदल कोली अर्गुनेशत नसिम मे हफ्ता के मिगनेस्तनी हफ्ता के वाहक मि सिलसिला के मुलिन अलफ फेश वाहक लीशन मे अल्फाला याशफा अब्दुल गनी हदिया कुरवा फा वाहके मे वाहके मेस्ति बेफलुंगे हित्तका उफावरिका मा हमजम गनेस्ते वेनकमा उम्मीद कुर मे हफ्ता के स्वाकुशाला देनी मरियमात फातनान

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: पल साकल पावत तेरी की ही नत्ता देन ती तनुं ऐहन साकले नेरे ने को तब्बुन बदाल
2: कोमेमिया का विस पाक कोल्ले वनी को निमुनी कार पाक करा जोनु का साकल साकल पाक करा जोनु का कारु देरा दो
3: की हाँ देरा काम ये दिए एनो हम दोर मती पाक को मियर पाक इन जोने विस नोने
2: पाक इन जोने ते माह दोरा कुनो ऐता पाक को फा कोड तांकोला का हिंगाली समरांगलु वाने
4: पाक करवा एहनस गवादा एक्को तप पाक करवा आदि अहम मिहु नंगुंदा गुनुवा गो तप पाक करवा
2: दिवी केवा को दिन कियम मुनिही रेडियो मुदर्रिस इस्लाम
5: मे मम्मी हारति को दिन मसक के निविच तो
6: लबा
5: एम फुरतमा यानिया कियाल दी बन यानिया फाहा गवि एककमे
6: मिस्ता कों कोफावा होरिहा अमलग हिसाब बल्लावाण तो हेक
2: दिवे ही इस्लाम केउम का इतुरु हिए
7: रेडियो मुदरिस सानवी दिवे ही
5: देख वाह क्या बेगो तुम हालत के
8: वाह का हालत में और कुड़ो नुबा को मान करवनी है मान करवने में वाह का एक कोण नुबा को लान
2: रेडियो मुदरिस मिहारु यूट्यूब चैनलों को में बागो तक उस अड़ो हाले वेरे दिवे राज्य गाड़ू के यूट्यूब चैनल अब हाँ सब्सक्राइब को लबा
9: मामा हालू की हिने अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुलु मेंगे हालू की नेत्ता
10: आरम में मस्रंगल मामा कोंका में तति कोल्लनी गेने मामा आरम में आता
9: मामा ती हा वोर को मुले न कमल ने आरम में ती कन कोल्ला फानो
11: दारिफुलु में हा दरंगड़े तिगुता मामा गातंगेस मामा हालू बलाला मामा के कंतत्त कोल्ल देती मामा वरंग उफावे
12: वगुता हालताय को लोब इम्तिहान कुरेवे मिदुनियेगा दरिफुल देके इम्तिहाय लोबवा बप्पे
1: दरिफुल आदे अवा बप्प काता निदुमु कुरे एकल वाहक अडु हालन तेय दो
13: एकम बप्पे प्रॉमिस वेबा कक्के वरे कुरे नुने दा
12: ए बप्प गे होफेन दे कुं हुट्टाली दरिफुल गे होफेन ता हकीकत कन हते आदिनु मट्टका ए बप्प गे दुनिये आबाद कुरुं हुट्टाली ए दरिफुल गे दुनिये फुरी हम कोतिनु मट्टका
1: आर दु कोल्दा फरुंदे आते स्कुर ये मंजर ओड
12: लफ्स तक कुंपुने नु देवेने कुर्बानी के वाहक रिहुं हुरी हिते के वाहक
7: दिवही राज्य गाडुं गेनिस्तेनी
12: रिसाही
13: मप्पे देखे कक वराल लोबेवे
14: कोमे बुरा सच दो है कि मैं दुरु कोरी एगार गड़ी फड़ा रहा
2: रिपीट हमेरे दिया गड़ी तिरी हूं आदि हुकुर दुहगिरे मेंदम बार गड़ी तिरी हूं एंग हां 7340 नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि 8 नुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
14: दिवे राज्य के आड़ू

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروانك
2: मैं हर गाड़ी तीन गाड़ी साढ़े तीन मिनट तीरिस है सिकुंत में देह राज्य गाड़ो मैं गाड़ी का मित्र नवाला ने सरकार के उलाना आमिल फरहत होगे देने वों अलीफ अलीफ मतिवेरे मजिस्ट्रेट कोर्ट अलीफ अलीफ मतिवेरे नंबर आईयूएल हस्ते का दे अब्लिक देह सभी सब्लिक हतरे कोर्टंग हाजिरों मंगेंगों राम अडुवरी स्टारलाइट आयशत नशा जाए की मैं कोर्टंग हुशेली बलमुगेंदा नंबर हतेंग अब्लिक यू फहेसी ओब्लिक देहा सबिस गजी आया गुड़गें मे कोटंग हाजिर कुरम बेनु वे हाजिर वे फनुवा फराते के वे मा देहा सबिस जुलाई 23 सन दोहके 11 गडी सुमिनट अलिफ अलिफ मतिवेरी मजिस्ट्रेट कोटंग हाजिर वमा रामडुवरी स्टारलाइट आयशत नशायांग अंगमे आदि मि देन्ने वि तारीख गडिया रामडुवरी स्टारलाइट आयशत नशाया मे कोटंग हाजिर नु जनमा नोता ए तारीख गडिया वीडियो कॉन्फ्रेंस मेदवेर को शरीयत का बैरे फनुवाणमा कोटंग हाजिरों में इंगुनी कमबला रामडुवरी स्टारलाइट आयशत नशाया के गैर हाजिर का मसल हिंगा निर्माण कम वे संगमे नवार जुले इतिहास अभिस अलगन में के लोबे तिमामा अलीफ अली फेरिदो दिलासा के खदीजा अब्दुल्लो दों के दवनी इतिहास अभिस जुले सोला का न्याय फे मामा के मच्छ दरन्यन्नो तवसेते वाणमा एमएस तोह के तेरेगा अलगन में नागुलवा एक निम्योंगे दिमे आय लग फरातों आयशत इब्राहिम हाते नुवे दे नुवे दे नुवे तिने फातमत नाहिदा हाते देंग है नुवे नुवे फहे फहे मोहम्मद तौफीक हाते फहेंग अशे एकेंगे के देसुमे जमीला इब्राहिम हाते हतरें हाते हतरें है सुमे दे अलगन में गे लोबे ती बप्पा अलीफ अली फेरिदो सादी विला फारूक अली वनी देहा सब्बिस जुलाई सतारा के न्याय फे बप्पा के मच्छ दरन्यनो तवसियत वर्णमा एमएस धोगे तेरे अलगन में ना गुलवा एक निम्मेंगे दिमे आय लग फरातु मोहम्मद फयाज हातें हातें के अशे सुमेती ने फहे हसन फयाज हाते नुए तिने अशे सुमे हाते सुमे अहमद फयाज नुए फहेंगे के नुए नुए हातें के आयशत शादिया हातें अशें हैं हातरे फहे फहे नुए अलगन के कोको काफी मफुशी आगदगे हुसे मुसावनी देहा सब्बिस जुलाई सादे का न्याय फे हुसे मुसा के मच्छ दरन्यन्व तवसेते वाणम एमस दोगे तेरेगा अलगन डागुलुवा एकर निम्योंगे दिमे आय लग फरातुं हुसें सोलाहु नुवे नुवे नुवे हतरें है हतरे दे मेहर गड़ीं तिंगड़ी साली सामिनेट असिकुंत में दिवे राच्चे काडू
3: अधियन अधियन की न व्यवस्थित हो रही
4: मेरी वर बड़ा हास व
3: अनेक कठिस्तु क्या रवि मता मन्ना हाँ द देरा व्यवस्थिये
4: आहारे के वर गैक कुछ जै आहारे न माला में कुरने
3: हास नो अब स्पेल द टी प्रोग्राम अडवे ही मती कहला हो रही हाँ कंका मंगलो हो दंगे गे ना
4: स्पेल द टी ये
3: Mikaal kankan dimaavi ma kanta kure vidhan goetan e programu nge gelne.
4: Spill the tea. Hame gani divehi rajya gadu.
5: Aditya dua hoge haveru hatra gadi fanaraga.
6: Repeat. Buddha dua hoge haveru hatra gadi fanaraga.
5: Adi budaspati dua hoge haveru fahed zahayru.
3: Engha sataristeka salis 9 kilohertz medium wave. अधे 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमें कने दिवही राज्य के अड़ों इंतजार को लवा
7: स्पिल द टी

0: मुन्ना कोबा की है ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंग कमें ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिकु दुं हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना आए कही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम हुरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ दे अंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: खुद्दे वे कुड़ा कुड़ा हेव कमकों ऐहे मी है केदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
2: खोको तेंती हैं आप दुनो वे तेतु वे पला हिंगा बले चे खाला नुके भी मी हामुरें ही की चेनु
3: अरे दत्ता तेतु आहिते नुवे गाहिते विष्णुए मी अकांगे बुना ही विष्णुए अरे दें की नंग हादा आनी
2: कोको टिका मंग हल्लें हो दमा
3: की ने खूंगो तको अरे मी आरु आरु बली बच्चे
4: लस नुकुरवा अवहा फरुआ होद्दवा
5: नफसाणी दुळा हेकं मे प्रोग्राम वस दिबे फ्रॉम नंग एही होते विदाण नफसाणी दुळा हेकं
4: कोम्मे होनहिर दुहेगेरे नुए जहायरु रिपीट होम दुहेगेरे मेंदम एके जहायरु आदि बुद दुहेगेरे मेंदम देगड तिरी हु
6: इंहा 1740 नुए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमेकनी दिवे राज्य गडु
7: सब 20 जुलाई दिवे राज्य के फखरवरी मिनिमम दोस्त